0: और मैं जब दरख्त हटाकर गाड़ी के पास वापस पहुंचा तो रुपयों का थैला गायब था।
1: कमाल है, हमारे इलाके में आज तक ऐसा नहीं। अब ये कोई मामूली बात नहीं, 20,000 का मामला है। हमें फौरन इसके बारे में कुछ करना चाहिए।
2: क्या करना चाहिए? पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए।
1: ए, कहां जाती है तुम?
2: छोड़ दो मुझे, जाने दो। मालकिन मैं लूट गई, मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे बचा लीजिए मालकिन।
3: क्या हुआ रूपा, क्या बात है?
2: मुझे गरीब जानकर शाम मेरे साथ जुल्म कर रहा है।
3: रूपा,
2: ये मुझे शादी का वचन देकर धोखा देता रहा, और अब जबकि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो ये 4,000 रुपए देकर मेरा मुंह बंद करना चाहता
1: है। रूपा, क्या पक रही हो तुम? एक शरीफ आदमी पर झूठा दोष लगाती हो।
3: दफा हो जा यहाँ से रूपा, शर्म नहीं आती तुझे ऐसा झूठ बोलते हुए?
2: नहीं नहीं मालकिन, मैं झूठ नहीं बोलती। शाम ने शहर से आते ही 1,000 रुपए दिए और कहा कि गाँव से चली जाओ।
1: नीच कमीनी, तेरी शर्म
4: नहीं नहीं शाम भैया, औरत पर हाथ नहीं उठाते।
2: मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा।
5: मैं खुद हैरान हूँ, इस पगली के पास इतना रुपया आया कहाँ से?
0: तो क्या आपको ये शक है कि रुपया मैंने चुराया है?
4: राम राम राम राम, तुम पर तो दुश्मन भी शक नहीं कर सकता। लेकिन श्याम भैया, बात बहुत बढ़ गई है। बेहतर यही है कि अपने घर की तलाशी देकर अपनी पोजीशन साफ कर लो।
5: भगवान, तलाशी से क्या फायदा?
0: नहीं रंजीत बाबू, ये मेरी इज्जत का सवाल है। चलिए मेरे साथ मेरे घर की तलाशी ले लीजिए।
5: लेकिन
0: लेकिन लेकिन कुछ नहीं रंजीत बाबू, इस बदनामी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइए मेरे साथ, चलिए मेरे घर देखिए, चलिए आप लोग ले लीजिए तलाशी।
3: क्या बात है, क्या हुआ श्याम बेटा?
0: माँ ये हमारे घर की तलाशी लेने आए हैं।
3: तलाशी?
0: इन्हें शक है कि मैंने कंपनी का रुपया चुराया है।
3: नहीं नहीं, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरा श्याम और चोरी, किसने लगा है मेरे बेटे पर ऐसा दोष?
0: तुम चुप रहो माँ, जाइए लीजिए तलाशी।
4: जाओ भाई।
3: खबरदार जो कोई आगे बढ़ा, हम गरीब सही पर इज्जत भी रखते हैं। मैं किसी को तलाशी नहीं लेने
0: दूंगी। तुम हट जाओ,
3: छोड़ दो
0: इन्हें, अपना शक दूर करने दो। जाओ।
6: तुम उस कमरे में देखो।
3: नीच कलमोही, जबान न जल गई तेरी, मेरे श्रवण जैसे बेटे पर ऐसी तोहमत लगा दी। याद रख, तूने एक देवता पर दोष लगाया है, एक माँ का कलेजा दुखाया है। जीते जी तो नरक उठाई फिरती है, मर के भी सीधे नरक में ही जाएगी।
6: ये मिल गया चोरी का माल।
0: बरखा देवी, ये झूठ है, ये धोखा है, इसमें जरूर किसी की चाल है। रंजीत बाबू, आप मेरे यकीन मानिए, मैंने चोरी नहीं की, मैं बेकसूर हूँ।
7: Yes, that is a scene from the movie I, Milen Ki Bela. It's pretty long, so I can't play the whole thing. So I apologize for that. It's, this clip is about a little over half an hour. So we'll deal with about 5 minutes I had just played. So we're going to play the title song from the movie I, Milen Ki Bela, which is done by Mohammed Rafi and Asha Bhosle. Here is a title song from the movie I, Milen Ki Bela. Do enjoy on Lemon Radio.